बहुत एम्बिगुअस है, स्पेशली आदमी लोगों के लिए. सो आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप. ये 3-4 साल पहले की बात है. एंड आई टोल्ड हिम ही वाज रियली नाइस, लेकिन आई वाजंट इंटरेस्टेड इन डेटिंग हिम. शायद हम दोस्त बनकर रह सकते थे. टू विच ही सेड कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू रोमांटिकली, लेकिन आई विल चेक इन विद यू एवरी लाइक 3-4 मंथ्स कि तू रेडी है, हो सकता है तू हाँ बोल दे. इनिशियली मुझे लगा काफ़ी क्यूट है, वाई नॉट. तो वो हर 3-4 महीने में मुझे मैसेज करके मुझसे बात करने की कोशिश करता था, बट ही काइंड ऑफ रियलाइज दैट आई हैड स्टिल फ्रेंड ज़ोन्ड हिम. तो अभी कल की बात है, ही टेक्स्टेड मी. अब इस बात को 3 साल हुए हैं व्हेन ही जस्ट लाइक रैंडमली टेक्स्ट मी एंड ट्राइज टू फिगर आउट कि क्या मैं उसे डेट करना चाहती हूँ. और कल जब ही रियलाइज कि 3 साल की मेहनत के बाद भी आई वॉज स्टिल पुटिंग हिम इन द फ्रेंड जोन, वो एक्चुअली मुझसे गुस्सा हो गया. एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट गर्ल्स लाइक मी डोंट डिजर्व लव, क्योंकि अगर लव उनकी खिड़की पर आकर खटखटा रहा है तब भी मैं अपनी खिड़की नहीं खोल रही हूँ. एंड आई एम लाइक, शायद माई वर्शन ऑफ लव इज नॉट यू, लाइक डोंट यू गेट दैट. बट उसे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा और उससे महान इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, और उसके प्यार को ठुकरा कर आई डोंट.

ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा।

Oi, sorry, mortal, lag the mortal down children. ओ छोटे मोटे लोग कराना मिले नाले छोटी मोटी गड्डी चीनी।

माय गॉड, लड़की जहर, कौन सी सिटी तेरी, कौन सा शहर, बेबी है डेंजर, लगती है स्ट्रेंजर, कैफीनेशन ऑफ कहर, लड़की हॉट

0: टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ओके देन, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, एक री एंट्री है। हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो जो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय अनीश सरकार श्रुदय। इट्स अ नई नवेली एंट्री। उड़ी उड़ी ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। 11 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है। पिछले हफ्ते से एक्चुअली 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 10।

0: कंपोजिशन उन्हीं के लिरिक्स गाने का नाम है शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग दैट मींस फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अब भी करो, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर जब हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो उसके ओवरऑल म्यूजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है। कोई मदारी बोलेगा,
2: मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा।
0: तो किसी के लिए वो होगा चौधरी।

0: बट आई ट्रूली थिंक दैट कोक स्टूडियो का इम्पैक्ट किसी एक गाने तक लिमिटेड नहीं है. दिस इज वन प्लेटफॉर्म जो हमें याद दिलाता है दैट इंडिया का म्यूजिक सीन कितना बड़ा है. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, फोक ट्रेडिशन बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम म्यूजिक में हमेशा सबकी जगह नहीं बनी और वो कोक स्टूडियो ने किया. उसने फोक आर्टिस्ट को सिर्फ फीचर नहीं किया, उनको सेंटर स्टेज दिया है. चौधरी में राजस्थान की मिट्टी है, मदारी में फोक और रॉक एक साथ है. That's what we call the perfect fusion. But ये perfect fusion जो है सिर्फ sounds and genres तक limited नहीं है, right? यहाँ पे generations मिल रही हैं, music के different regions मिलते हैं, independent artists और folk musicians एक साथ मिलते हैं. जो गाने वो produce करते हैं उसमें traditional roots होते हैं. दूसरी तरफ contemporary production, uber cool beats कि ऐसा लगता है ये गाना कहीं सुना भी है और नया भी है. And count का जो अगले वाला गाना है वो एग्जैक्टली ऐसी ही कोलैबोरेशन है. एक तरफ आदित्य रिखारी जैसे पॉप स्टार, दूसरी तरफ कुटले खान जैसे कंटेम्पररी राजस्थानी आर्टिस्ट. रैविटोर का म्यूजिक, ऊबर कूल प्रोडक्शन, गाने का नाम है ए अजनबी. अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए. 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: गर्मेश शर्मा की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, रजत नागपाल राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। शराब वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। वी वर टॉकिंग अबाउट कोक स्टूडियो भारत। कैसे कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल रूट्स को एक फ्यूजन की तरह प्रेजेंट करता है। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है, बट टुडे वी वांट टू गिव स्पॉटलाइट टू

गाना सुन के एकदम पावरफुल फ्यूजन ट्रैक लगता है, राइट? विशाल ददलानी की रॉ एनर्जी, सोनू कक्कड़ के बहुत इम्प्रेसिव वोकल्स हैं इस गाने में, क्लिंटन सेरेयो की अरेंजमेंट, फोक रॉक सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं, विच इज ऑल ग्रेट, राइट? बट इस गाने की जो असली ब्यूटी है, जो असली पावर है, उस गाने के मीनिंग में है। जो मेन लाइन है इस गाने की, इट सेज मदारी मेरा तू मैं जमूरा तेरा। मदारी मतलब वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो खेल दिखाता है, जमूरा उसका साथी जो उसके इशारों पर चलता है, और ये जिंदगी एक सर्कस ही तो है जहाँ हम बस नाच रहे हैं। ये लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल मेटाफर। इंसान जमूरा है और जिंदगी इश्क या शायद ऊपर वाला मदारी। हमको लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी इनविजिबल फोर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा मनोज यादव कह रहे हैं इस गाने के थ्रू। विद द कॉम्बिनेशन, द पावर, द एनर्जी, द वोकल्स, इट्स टॉप नॉच, 10/10 एक्सपीरियंस। इस गाने को आप सिर्फ सुनते नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है ये गाना ऐसे लंग्स में उतर जाता है, बिकॉज इतनी एनर्जी दे जाता है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इतने सालों बाद भी अगर आप म्यूजिक लवर से उनका फेवरेट कोक स्टूडियो इंडिया ट्रैक पूछते हो, मदारी का नाम ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। विशाल ददलानी, सोनू कक्कड़ की आवाज, क्लिंटन सेरेयो की कॉम्पोजिशन, मनोज यादव के लिरिक्स, दिस इज मदारी, अ कोक स्टूडियो थ्रोबैक प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडिया टॉप 10। बनी गाना में कनका, एंजॉय।

0: अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है अर्ज किया है। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इस दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। आई नो दैट हम सबके कंफर्ट सॉन्ग होते हैं, पर हर वो गाना जो हमें अच्छा लगा हमने कभी ना कभी तो पहली बार सुना था ना। इट्स टाइम टू पुट स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग लाइक दैट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई आर्टिस्ट रेकमेंड करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। हर आर्टिस्ट, हर इंसान, मैं, आप किसी ना किसी ड्रीम को चेस कर रहे हैं और हम उसकी जर्नी में है अभी। एंड ऑफन जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो हम वापस जा सकते हैं, ना अभी तक वहां तक पहुंचे हैं जहां जाना था। एक तरह से हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। आज का गाना स्पॉटलाइट एक ऐसा गाना है जो इसी फीलिंग को हाईलाइट करता है। गाने का

0: गाने में तीन आर्टिस्ट हैं, एमसी स्क्वायर, राधिका भिंडे एंड विकेट सनी। एमसी स्क्वायर की जर्नी खुद इस गाने की थीम से कनेक्ट करती है। हरियाणा के पलवल से बिलोंग करते हैं वो। उन्होंने हरियाणवी हिप हॉप को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। कहानी वो बता रहे हैं लेकिन लग रहा है हमारे बारे में। यू नो वो फीलिंग जब आपका सपना भी पूरा नहीं हुआ है, वो फीलिंग जब आप इतना आगे आ चुके हो कि वापस जाना ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन इतना आगे भी नहीं आए हो कि अभी सेलिब्रेट कर सको। कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में सक्सेस ढूंढ रहा है, कोई अपने शहर में ही बेटर लाइफ ढूंढ रहा है। ऑल ऑफ अस आर चेजिंग दैट ड्रीम एंड सम ऑफ अस आर लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट दैट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, Be open to it, lyrics को ध्यान से सुनना। MC Square, Radhika Bhide, Wicked Sunny का गाना This is Long Way From Home on our Gaana Spotlight of the Week। बंदी का नाम है RJ Kanika, enjoy।
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती है दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको देखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसे तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ। कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ। मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट तो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं। पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है। कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद।

फिर पड़ा कती खाली मेरे सुपने में, एक अरहड़ भरी ट्राली मेरे सुपने में, सरसों के फूल की बाली मेरे सुपने में।

खित जगे सरवाड़े एक डिबिया कीलो जड़ती दीखे आड़े वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में फिर फंस गया बचपन चका चौंद के जाड़े में।

एक रोवे बाजा हीर हीर चिल्लावे और टैम की सुई तीर से तोड़े जावे। मेरा मन दरिया में डूबा गड़वा सोनी का, मेरा घर पारोसा देवदास के लावे।

0: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पॉप म्यूजिक इज ऑल अबाउट हाउ इट मेक्स अस फील। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं तो वो नए नहीं होते पर पुराने भी नहीं लगते, तभी हम उन्हें क्लासिक्स बुलाते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

वाना बाय गणेश हेगड़े। ये गाना 2005 में रिलीज हुआ था एज पार्ट ऑफ द एल्बम जी गणेश हेगड़े। गणेश हेगड़े ने ये गाना सिर्फ गाया नहीं था, उसे कंपोज भी किया, परफॉर्म भी किया एंड म्यूजिक वीडियो को क्रिएटिवली लीड भी किया। इस एल्बम से पहले तक मोस्टली लोग गणेश हेगड़े को एक कोरियोग्राफर के रूप में ही जानते थे, बट आफ्टर दिस ही बिकेम अ पॉप स्टार डूड एंड मैं दीवाना वाज सच अ रेज। अगर आपने ये गाना सुना है देन यू नो दैट यू कैन नॉट जस्ट लिसन टू द सॉन्ग, यू एक्सपीरियंस इट इन द मूव्स इन द ग्रूव्स। और मिरर के सामने तो आई नो we all have tried that step. The video of the song was so futuristic. Dance to I still can't copy it. Styling, everything was larger than life. Usually जो pop music की videos होती थी in 2000s, 90s, वो बहुत story driven होती थी, character driven होती थी, but this one was exactly performance led energy type की. But the nostalgia doesn't just hit because of the video. ये गाना उस दौर को represent करता है जब Indian pop artists खुद stars हुआ करते थे, जब उन्होंने ये बिलीव करना शुरू किया दैट आई हैव टू बी द हीरो इन माय ओन सॉन्ग। गाना किसी फिल्म का नहीं है, कोई एक्टर स्क्रीन पर नहीं था, कोई मूवी प्रमोशन नहीं थी, आर्टिस्ट ही हीरो है एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। एंड ऑनेस्टली 20 साल बाद भी इस गाने में एक चीज पुरानी नहीं लगती। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। द उबर क्लासिक सॉन्ग फ्रॉम 2005, गाने का नाम है मैं दीवाना। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू एज अ कैसेट क्लासिक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: monitor is certainly living up in here. Let me take a hat in another one. Give it to me now, give it to me now. Let me dig a day.
1: I swear, ये गाना सुन के स्कूल की छुट्टियां याद आती हैं. वो टाइम याद आ जाता है जब हम गाने सुनते भी थे, देखते भी थे एंड कॉपी भी करते थे. गणेश हेगड़े की आवाज में दैट वॉज मैं दीवाना ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. 90s एंड 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप सॉन्ग दैट यू स्टिल थिंक इज फैबुलस हमसे आके शेयर करो. अश्काई और मैं आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. We might feature your song next week. Now back to the countdown. It's time for the top two songs of the week. There's been slight movement. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना बैरन 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद करण औजला 21 वंस अगेन दो पोजीशन ऊपर जंप करके दे हैव सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट. 28 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 2.

0: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, या रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। हाय, इट्स मी सुरेन एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन द मिर्ची टॉप 20। एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, विच इज अ डीसेंट साउंड ट्रैक, लेकिन ये रॉकस्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है। ये बात आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ। द सॉन्ग्स हैवन्ट कनेक्टेड द सेम वे, बट हियर इज अ नाइस सॉन्ग मस्कारा, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, एंड इट इज ऑन नंबर 20।
1: नंबर 20।

0: कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो।
1: 98.3 Mirchi. It's hot.
2: Number 70.

0: वेलकम टू द जंगल। पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री AKA बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाब पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द वायर स्पाई यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली गई है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा AR रहमान, जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो से म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना बाय AR रहमान एंड इरशाद कामिल।
1: नंबर 16।

बात भी खत्म नहीं होता। आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य। क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं, और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो।

0: देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।
1: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी,

डूड, इट साउंड सो लवली. पैटर्न साफ नजर आ रहा है. मिर्ची डॉट 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स, दिल इश्क तो है

Hari, Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And ab जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना। Well, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में, नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता। आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए।

0: यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली, गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पी के पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो OTT पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलर्स फ्रॉम धुरंधर
1: नंबर 1।

मैं लाया तेरा सुरमा, लाया तेरी बाली, लाया तेरा पाउडर होठों की लाली, एक तेरी फेंटी की पेटी उठा ली, एक तेरी कोको वलेती बाली, मचाओ रंगून करती है शक तू, ला के मेरे रेशम तन तेरा ढक दू, जितना मैं दूर उतनी तू गुस्सा मार ले गुस्सा, गाली न बक दू आलिया जैसी बात है तेरी, पिक्चर हिट शुरुआत है तेरी, इतनी तेज में भाग के आया भूल के जान ही फट गई मेरी बेबी।

Mirchi. It's hot. Mirchi.

0: Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot. Radio Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.

देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए,

Mirchi, it's hot.

0: Avicii. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है मेरी देसी दुनिया। दिस इज मिलिट्री मॉर्निंग्स, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। क्लॉक बोल रहा है हसल करने का टाइम आ चुका है, दिल बोल रहा है परौंठे खाने का टाइम आ चुका है, और बॉस बोल रहा है ईमेल चेक किया। मतलब लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड है, और इसीलिए शुरू हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज का मिशन काफी सिंपल है, थोड़ा सा बॉलीवुड की बातें करने वाले हैं, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बकबक एंड थोड़ी सी अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तुम्हें यहाँ वहाँ की खबरें भी पता चल जाएंगी, और साथ साथ में तुम्हें मिलने वाली है मिर्ची दार वाइब्स। एंड ऑफ कोर्स आई हैव गॉट सम मिर्ची दार बैंगर्स फॉर यू। प्लेलिस्ट तैयार है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट चाय कॉफी सब कुछ तैयार है। और अगर फिलहाल तुम कम्यूट पर निकल चुके हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर पजामा पहन कर रेडी हो चुके हो, या फिर सीक्रेटली ब्रेकफास्ट के साथ साथ कल रात की बिरयानी भी चट कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। और ऑफ कोर्स मुझे सोशल मीडिया पर भी अपने साथ रख सकते हो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चबक के बैठो, यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स शो शुरू हो चुका है, नाम है।

गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन। एग्जैक्टली, हम चलने वाले हैं पता करने आज का दिन हिस्ट्री में क्यों अमेजिंग था। 1631 में मुमताज महल पास अवे एंड इयर्स लेटर दैट लव स्टोरी इंस्पायर्ड द बिल्डिंग ऑफ द ताज महल। जंप टू 1775, बैटल ऑफ बंकर हिल। अमेरिका वॉज बेसिकली इन इट्स कॉम्प्लिकेटेड फेज। 1885 में न्यूयॉर्क रिसीव्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रॉम फ्रांस। इमेजिन करो गेटिंग अ जायंट स्टैच्यू डिलीवर्ड। और यहाँ पर मेरे नेबर्स अमेजोन पैकेज के साइज को देखकर मुझे जज करते हैं। 1944 में आइसलैंड बिकेम इंडिपेंडेंट एंड 1961 में इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सुपरसोनिक फाइटर जेट The HAL HF-24 Marut took its maiden flight. 1972 May Watergate happened and 1991 May Rajiv Gandhi was posthumously awarded the Bharat Ratna. And that's it for time traveling for today. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. नमस्ते, बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे इज कमिंग अप ऑन 21st of June. मिर्ची ने डिसाइड किया है कि जिम मेंबरशिप थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, सो हम फ्री में तुम्हें दे रहे हैं योगा क्लासेस. वेलकम टू मिर्ची योगाश्रम, और आज की क्लास गुरु प्रसन्नंदा के साथ. आज हम सीखेंगे द शादी कब करोगे प्राणायाम. सबसे पहले अपना बैक स्ट्रेट कीजिए, फेस को काम कीजिए, इनर केओस को कंट्रोल कीजिए. अब इमेजिन कीजिए कि आपके दूर के रिश्ते वाली एक आंटी ने आकर आपसे पूछा कि बेटा शादी कब कर रहे हो. ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक लंबी सांस अंदर खींचो, फिर एक स्माइल के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए नॉट हेलो, नॉट हाउ आर यू, डायरेक्ट अटैक करो और कहो, आंटी आपके जाने के बाद अब सांस अंदर लो, एक स्माइल निकालो, अब सांस बाहर निकालो. नेक्स्ट आंटी, रिपीट अगेन. बाय राउंड 11 तुम्हारा सोल जो है ना, तुम्हारी बॉडी को छोड़ देगा, एंड बाय राउंड 14 एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी. एडवांस स्टूडेंट्स कैन ऐड हेड नॉडिंग एंड फेक चेकिंग मैट्रिमोनियल एप्स. इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21st of June को सेलिब्रेट होता है, बिकॉज बैलेंस, वेलनेस एंड इनर पीस, ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब इतने सारे काम होते हैं घर के और बाहर के. ये पीस अटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस ईयर द फोकस ग्लोबली इज अराउंड हेल्थियर एजिंग. फटाफट से मुझे अपने बेस्ट और फेवरेट योगा पोजेस या फिर फनीएस्ट योगा पोजेस बता सकते हो तुम व्हाट्सएप करके 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड द बेस्ट वन विल मेक इट ऑन एयर. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

मॉर्निंग माय दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट मिर्ची, मॉर्निंग्स है नाम शो का। और अब हम पता करने वाले हैं कि वेदर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है। आज का फोकस सुनने के बाद ही डिसाइड करना आज तुम पहनने क्या वाले हो। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 60 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स पार्टली क्लाउडी, यानी कि वेदर ने कहा है फुल सिचुएशनशिप चल रही है तुम्हारे और वेदर के बीच में। कमिटमेंट टू सनशाइन अभी फिलहाल आया नहीं है। सुबह के 6 बजे तक तो काफी क्लाउडी माहौल था, लेकिन 6 बजे के बाद धीरे धीरे क्लाउड्स छटने लगे हैं। इट्स स्टिल अ लिटिल बिट क्लाउडी, सो इफ योर मॉर्निंग मूड स्टार्ट्स ड्रामेटिक डोंट यू वरी, स्काई भी अपने इमोशंस सुबह सुबह ही प्रोसेस कर रहे होते हैं। एंड फन फैक्ट ये है कि आज का फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम है कम्पेयर टू व्हाट एक्चुअली इट इज। पूरे दिन भर का तापमान रहने वाला है 59 डिग्री से लेकर 80 डिग्री फारेनहाइट तक, लेकिन फील होने वाला है 60 टू 79 डिग्री फारेनहाइट तक। एंड रेन रिलैक्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में 1 मिलीमीटर की बरसात एक्सपेक्टेड है, अनलाइक लास्ट 24 आवर्स जहां पर हमने 0 मिलीमीटर की बरसात देखी, यानी कि अम्ब्रेलास को तो छुट्टी दे दी थी। आज के दिन कैरी करना पड़ेगा, नहीं तो शायद तुम्हारी हेयर स्टाइल थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। ऑल्सो आज का हाई इज ऑलमोस्ट द सेम एज यस्टरडे, कल हमने देखा 54 टू 78 डिग्री फारेनहाइट का रेंज, और आज 59 टू 80 डिग्री फारेनहाइट के बीच में फ्लक्चुएट करने वाला है टेम्परेचर। सो वेदर आज काफी ठीक ठाक सा है, बाहर निकलते टाइम लेयर के प्लेयर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ में SPF 50++++ लगाना भी जरूरी है, एंड ऑफकोर्स ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। एंड ये बोलने की जरूरत है कि अपनी वाइब मिर्चीदार रखो, नहीं ना मिर्ची लगाए रखो, मुझे अपने साथ जमाए रखो। मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब मुझसे बातें करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम द शो तो फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। जरा अब बारी आ चुकी है पता करने का दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले अमेरिका ने अपना मिलिट्री कमांड का नाम ऑफिशियली अपडेट करके इंडो पैसिफिक से वापस पैसिफिक कमांड कर दिया है। मतलब ऑफिस ईमेल सिग्नेचर चेंज हो चुका है, काम ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्टेडली सेम ही रहने वाले हैं। नंबर टू पर, एट द G7 डिस्कशंस, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट सी फेयर सेफ्टी एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग श्योर पीपल वर्किंग एट द सी कैन डू देयर जॉब्स विदाउट फियर। ये रिमाइंडर भी था कि हेडलाइंस के पीछे रियल फैमिलीज और रियल पीपल होते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन वर्किंग ओशंस, शिप्स एंड इम्पॉसिबल टाइम जोन्स। एंड नंबर थ्री पर, फीफा वर्ल्ड कप से लायनल मेसी स्कोर्ड इन अर्जेंटीनाज वर्ल्ड कप ओपनर एंड गॉट इमोशनल आफ्टरवर्ड्स। मतलब इमेजिन बीइंग दैट सक्सेसफुल and still crying after achieving another goal. Messi has now scored 5 goals from outside the box in his FIFA World Cup career. There was also a post-match debate online around an on-field incident because Argentina captain Lionel Messi escaped red card after stamping on Algeria's Issa Mandi during the FIFA World Cup 2026 opener. And that's it for Mirchi Awaka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। फुटबॉल फैंस पे अटेंशन, इस साल लायनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप में अपना 6th वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड कल रात को लायनल मेसी ऑफिशियली किक्ड ऑफ हिज 6th फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन विद अर्जेंटीनाज ओपनिंग मैच अगेंस्ट अल्जीरिया। 6 वर्ल्ड कप्स देख लिया भाई ने, एंड सम ऑफ अस हैवंट इवन फिनिश्ड 6 एपिसोड्स ऑफ वन शो विदाउट स्टार्टिंग अनदर। और अगर तुम लेट तक जाकर मैच देख रहे थे तो कांग्रेचुलेशंस, आज अगर तुम्हारी मीटिंग है ऑन कैमरा तो कैमरा ऑफ रखने की जरूरत है तुम्हें। बट वेट, फुटबॉल शिफ्ट खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज आज दोपहर में सारी आंखें सारी निगाहें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहने वाली है एज पोर्टुगल ओपन्स देयर कैंपेन अगेंस्ट DR कांगो। मतलब कि लंच ब्रेक ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है, एंड कैन वी जस्ट अप्रिशिएट दिस फॉर अ सेकेंड। मतलब मेसी एंड रोनाल्डो स्टिल शोइंग अप, स्टिल क्रिएटिंग मोमेंट्स आफ्टर 6 वर्ल्ड कप्स। वाओ, वैसे तुम मुझे बताओ, तुम टीम मेसी हो या टीम रोनाल्डो हो? फटाफट से मुझे DM करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड व्हाइल यू आर एट इट, जल्दी से मैं तुम्हें याद दिला दूं, तनिष्क पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करो अपना पुराना गोल्ड एंड गेट $5 का एक्स्ट्रा बेनिफिट पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड अपॉन डायमंड परचेजेस। और साथ में अगर तुम्हारा पुराना गोल्ड जो है वो 9 कैरेट से ऊपर है तो डिडक्शन उस पे 0% होगा अगर तुम एक्सचेंज कराओगे अपना गोल्ड जाकर वहां पर। तो तनिष्क के शोरूम पर फटाफट से पहुंचो, आस्क देम फॉर फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज ऑफर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। फटाफट से अभी लगाती हूं मैं तुम्हारे लिए मिर्ची दर बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा नाम है प्रिसला। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो आज का दिन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी चाय जो है वो काफी गर्म है, तुम्हारा ट्रैफिक जो है काफी कम है और लोग जो है वो आज तुम्हें बहुत ज्यादा खुश करने वाले, ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। लेकिन साथ साथ में मैं तुम्हें ये भी बताने वाली हूँ कि आज तुम्हारे बर्थडे क्लब में कौन कौन से सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ शामिल है। सबसे पहले बैरी मैनिलो जो कि म्यूजिशियन है, एंटरटेनर है एंड काफी फेमस है। देन वी हैव वीनस विलियम्स हु इज अ टेनिस लेजेंड और जो इन्हें नहीं जानता वो एक रॉक के अंडर जी रहा है। देन वी हैव केंड्रिक लमार, ग्रैमी विनिंग रैपर। ऑल्सो साथ साथ में वी हैव ग्रेग किनियर, विल फोर्टे एंड जोडी विटेकर। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है तो मुझे डीएम कर सकते हो तुम अपने बर्थडे शाउट आउट, अपने बर्थडे विशेस या फिर अपने बर्थडे इनवाइट्स भी केक भी भेज सकते हो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझे मैसेज भेजना चाह रहे हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: टाइम फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर रेट अपडेट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,320 $4,320 पर ट्राउस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। इस फादर्स डे की सिलेक्शन पे जब 22 कैरेट गोल्ड मेंस ब्रेसलेट, 22 कैरेट गोल्ड की चेन, 22 कैरेट गोल्ड के मेंस सिक्की कड़ा या प्लैटिनम की चेन्स और प्लैटिनम के मेंस बैंड। आइए राज ज्वेल्स की खूबसूरत सी सिलेक्शन देखने के लिए, जिसमें आप आज 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी अप्रूव होने पे घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स को पैसे दे सकते हैं फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए। मिलके राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
0: एंड दैट्स इट फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे बातें करनी है तो कनेक्ट करो मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: राइट, वेलकम बैक टू द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड अब बारी है मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले क्लिप मेकिंग राउंड्स शोड यूके पीएम कीर स्टार्मर ग्रीटिंग इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी वार्मली बिफोर द लीडर्स ग्रुप फोटो। ऑल्सो मोदी एंड इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी वर सीन चैटिंग बिफोर द समिट फोटो आफ्टर देयर अर्लियर वायरल मेलोडी मोमेंट बिकेम इंटरनेट फोकलोर। मेलोनी जोक्ड अबाउट देम बीइंग फेमस ऑन इंस्टाग्राम। Number 2 per Canada PM Mark Carney also reflected on broader participation at G7, saying conversations benefits when more countries bring different perspective to the table. And finally, number 3 per FIFA World Cup, say France kicked off their World Cup campaign with a win over Senegal. And Kylian Mbappe scored twice and reached a new milestone as France's all-time top international goal scorer. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने हुए हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: Here we go again. Authentic, original and better than our right.

0: राइट, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग. जरा बारी आ चुकी है
1: मिर्ची राशि जोन.
0: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, रिलेशनशिप में कुछ शिफ्ट आ रहा है एंड ऑनेस्टली इट्स अ गुड शिफ्ट. डोंट क्लिंग टू ओल्ड स्क्रीनशॉट्स एंड ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स. फ्यूचर वर्जन को ऑलरेडी थैंक गॉड बोलना सिखा दो. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज का वाइब है स्टॉप कैरिंग द होल ग्रुप प्रोजेक्ट. अगर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो तो स्पीक अप. Respect isn't auto renewed. Lucky color is forest green. Lucky number is 22. Gemini यानी मिथुन राशि, सब advice देने वाले हैं आज, लेकिन inner voice quietly तुम्हें बोलने वाले हैं, I told you already and trust your instincts. Overthinking charges extra लगेंगे, इसलिए मत करना. Lucky color is silver mist. Lucky number is 5. Cancer यानी कर्क राशि, अभी सब random लग रहा है ना? रिलैक्स. पीसेस कनेक्ट हो रहे हैं बिहाइंड द सीन्स. यूनिवर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है तुम्हारी लाइफ में. लकी कलर इज मून व्हाइट. लकी नंबर इज 18. लियो यानी कि सिंह राशि, स्मॉल मिस्टेक्स चलता है यार. जो प्यार और एनर्जी तुम लोगों को देते हो दैट्स द रियल फ्लेक्स. आज एक्स्ट्रा हग्स देना, लेस गिल्ट देना और अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखना. लकी कलर इज सनसेट गोल्ड. लकी नंबर इज 31. वर्गो यानी कन्या राशि, प्लॉट ट्विस्ट टुडे. डू समथिंग सिर्फ फन के लिए. एक्सेल शीट बंद करो, लैपटॉप बंद करो, लाइफ को थोड़ा सा सरप्राइज करो एंड डू समथिंग जस्ट एवे. लकी कलर इज लैवेंडर ग्रे. लकी नंबर इज 9. एंड दैट्स इट फॉर पहली 6 राशियां. बाकी की 6 राशियों को लेकर आती हूँ राशि जोन पार्ट 2 में थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड ऑफकोर्स मुझे फॉलो करो जाकर. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब बारी है राशि जोन पार्ट टू की।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, आज स्टेशनरी मत रहना, मूव, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू फेसेस, न्यू इंस्पिरेशंस। जीपीएस जो है वो बोर नहीं होना चाहिए आज। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज वेवलेंथ मिसमैच हो सकता है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरीवन मे बी चेंज द प्लेलिस्ट फर्स्ट। लकी कलर इज प्लम पर्पल एंड लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, अगर तुम अकेला ओपिनियन लेकर खड़े हो तो भी स्टैंड लो, कॉन्फिडेंस पर टैक्स नहीं लगता है। लकी कलर इज कॉपर ऑरेंज, लकी नंबर इज 33। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, टर्निंग पॉइंट आ रहा है, डिसीजंस फास्ट ले लो, हार्ट को थोड़ा सा वेट लिस्ट पे रखो, स्ट्रेटजी को फ्रंट रो दे दो। लकी कलर इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 6। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज एडवाइस मत पुश करो, उल्टा साइकोलॉजी ट्राई करो, कभी कभी ना मत करो सुन के लोग वही करते हैं जो मत करने को कहा गया है। ह्यूमन सॉफ्टवेयर का वायरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। लकी कलर इज आइस मिंट, लकी नंबर इज 24। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, सोल्यूशन दिख रहा है, एनर्जी लगेगी इस काम में, लेकिन ऑनेस्टली प्रोक्रास्टिनेशन को फुल टाइम जॉब बना चुके हो तुम, इसीलिए उसे छोड़ो और अपना काम करना शुरू करो। लकी कलर इज ओशन टील, लकी नंबर इज 16। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट द्वितीय। अभी फिलहाल चलाती है तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स। मेरा नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे बातें करना है अपार्ट फ्रॉम द शो तो फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग्स और मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ऑफिशियली अब मेरे साइन ऑफ करने का टाइम आ चुका है, बट बिफोर योर बॉस स्टार्ट्स वंडरिंग व्हाई योर हेडफोन्स आर स्टिल ऑन, लेट मी टेल यू एक लास्ट चाय पे चर्चा टाइप की अपडेट. हमारा नेबरहुड स्पाइडरमैन जो है ना, यानी कि टॉम हॉलैंड, ही इज एंटर्ड द हस्बैंड मोड. टॉम हॉलैंड हैज कंफर्म्ड हिज वेडिंग टू ज़ेंडेया, एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट दोज एआई जनरेटेड वेडिंग पिक्चर्स फ्लोटिंग अराउंड ऑनलाइन, ही शेयर्ड दैट हिज फैमिली, देयर फैमिली एक्चुअली वर देयर एट द एक्चुअल वेडिंग. और फिर वो लाइन जो रोम कॉम राइटर्स ड्रीम अबाउट, ही सेड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम द हैप्पीएस्ट आई हैव एवर बीन व्हेन आई एम विद हर. Excuse me while I dramatically look outside the window for absolutely no reason. And honestly, it's so cute. Not because it's celebrity news. It's because after all the edits, rumors, reels and internet noise, the nicest flex is still saying, I like being around this person, right? So today's Mirchi thought before I leave would be, find people who make your life feel less like Monday morning and more like Friday evening. और अगर ऐसा तुम्हें कोई मिल जाए ना, तो उसे पकड़ के शादी कर लो. और अगर ऐसे से शादी कर ली है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझो. अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है, तो मैं जरूर हूँ. मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. फिलहाल मेरी तरफ से बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: 90s का एक्शन देख देख कर जब हम पले बड़े, तो हमें रियलाइज नहीं हुआ कभी कि यार ये जो एक्शन किया करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए है। हम हमेशा इतने ज्यादा मेस्मराइज रहा करते थे कि ओहो हीरो क्या मारता है यार, क्या लड़ाई है, डुशुम बिशुम। लेकिन जब मौत का कुआं बचपन में देखा करते थे और जो मैंने अब बड़े होने के बाद देखा, भाई दोनों ही मेरे एक्सपीरियंसेस में जमीन आसमान का फर्क आ गया।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara. And now you tune in with me on

मिर्ची। एंड वाकई में यार, मौत का कुआं जब हम बचपन में देखा करते थे तो हम इतने एक्साइटेड रहा करते थे और हमेशा मेस्मराइज कि वाह यार, ये बंदा कैसे बाइक चला रहा है यार, ऐसी जगह पे दीवार पे बाइक चला रहा है। फिर गाड़ी भी आ जाती थी उसके अंदर। अब जब बड़ी हुई ना मैं, और अभी कुछ टाइम पहले एक्चुअली मौका मिला मुझे, एक लोकल मेला लगा हुआ था जब मैं हैदराबाद गई थी, और वहां पर मौत का कुआं लगा हुआ था, तो हम सारे कजिन्स ने बोला यार बचपन की यादें ताजा करते चलते मौत का कुआं देखने के लिए। आई स्वेयर वो मौत का कुआं, वाकई में मुझे मौत का कुआं लगा। बचपन में हम सिर्फ नाम से खेला करते थे कि अरे यार मजा आएगा, मरता थोड़ी है कोई। लेकिन जब मैंने वो मौत का कुआं देखा, पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां मेरी ढाई हो गई। दूसरी बात ये कि जब मैंने उन बंदों को बाइक चलाते हुए देखा, बिना हेलमेट के देखा, और मैंने ये देखा कि ये हाथ छोड़ छोड़ के बाइक चला रहे हैं, तो मेरी तो सांसें अटक गई यार। ऊपर से वो बंदा जो कार चला रहा था, वो कार से बाहर निकल के कार चला रहा था, हाथ हिला हिला के कार चला रहा था, पैसे अपने हाथों से कलेक्ट कर करके कार चला रहा था। और वहां पर बाइक एक या कार एक नहीं थी, बाइक्स भी दो तीन थी और कारें दो थी। दैट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। एंड मैं सही बता रही हूँ, पूरे टाइम आई वॉज नॉट एट ऑल मेस्मराइज्ड दिस टाइम। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दिल थाम के बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि बस अल्लाह मियाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक्शन सीन्स 90s की दौर में जब हीरो किया करते थे, और फिर हम जब उसी से रिलेट करते हुए ये एक्शन इकलौता जो हमारी लाइफ में रियल हुआ करता था वो देखा करते थे, तो बड़े खुश हो जाया करते थे। अब ना बाबा ना, हिला के रख दिया था मुझे इस एक्सपीरियंस ने, और मैंने और मेरे कजन ने भी डिसाइड किया अब कभी मौत का कुआं नहीं देखेंगे रे बाबा। इनफैक्ट आई ऑल्सो समवेयर फील कि द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू जस्ट स्टेप अप अ बिट एंड टेक अ कॉल ऑन द सेफ्टी पर्सपेक्टिव ऑफ द मौत का कुआं, बिकॉज आई फील फॉर दोज पीपल जो ये काम कर रहे हैं। देर इज अ लॉट ऑफ सेफ्टी एक्शंस जो रेगुलेट कर सकते हैं एंड स्टिल दिस बिजनेस कैन गो ऑन। आई होप समवन इज लिसनिंग टू मी और ये एक्शन ले ले। बढ़िया, जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी के लिए मैं मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: Free.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे यार की शादी है, ये फिल्म देखने के लिए ना पूरी बारात गई थी हम कजिन्स की। सीरियसली, गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था और हम ये मूवी सब एक साथ देख कर आए थे। इस फिल्म की याद कुछ और ही है इस वजह से।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अब देखो, मेरे लिए एक्सपीरियंस अलग है लेकिन मूवी का एक्सपीरियंस अलग है। एंड ये फिल्म जिसमें कि ट्यूलिप जोशी लीड कर रही हैं, एक्चुअली यही रोल अमीषा पटेल को ऑफर किया गया था लेकिन तब तक तो वो सुपरस्टार हो गई थी, उनके पास टाइम नहीं था एंड उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस फिल्म को करने से, बिकॉज उनको ये लगा कि यार इस फिल्म में एक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक फ्लॉप एक्टर है और उनके करियर की सिर्फ शुरुआत है। वो फ्लॉप एक्टर जिसके बारे में वो बात कर रही थी, दैट वाज उदय चोपड़ा। फिर तो ऑफ कोर्स ट्यूलिप जोशी अमीषा पटेल की जगह आ गई, लेकिन इसका जो असर हुआ वो ये हुआ कि उदय चोपड़ा इस स्टेटमेंट को लेकर बड़े गुस्से में थे। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि इस एक्ट्रेस के साथ यशराज बैनर कभी काम नहीं करेगा। एंड बिहाइंड द सीन्स की अगर बात की जाए ना, तो यार वो गाना तो हम सभी को याद है कि हम दोनों जैसा है कौन यहाँ। ये गाना जब शूट हो रहा था तो पीछे एक बड़ा सा बोर्ड है जिसको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, कुछ एडिट्स वेडिट्स का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये बोर्ड ना बहुत ही दिमाग लगा के बनाया गया था। वो बोर्ड नहीं होता जिसमें फॉर्मर पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनके नाम होते हैं, तो इस बोर्ड के ऊपर विनर्स के नाम थे, विनर्स जोड़ी के नाम थे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1988। और पता है ये जो जोड़िया थी ये कहां से निकल के आ रही थी? यशराज बैनर की मूवी के बनी हुई जो फिल्में थी। 1989 की बात करें तो चांदनी के कैरेक्टर्स जो ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने प्ले करे थे, रोहित और चांदनी, उनके नाम लिखे हुए थे। अगर 1991 की बात करें तो लम्हे मूवी जो कि अगेन यशराज बैनर की थी, उसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के कैरेक्टर्स वीरेन और पूजा के नाम लिखे हुए थे। देयर वाज 1993 के डर के कैरेक्टर्स राहुल और किरण, DDLJ के कैरेक्टर्स के नाम राज और सिमरन, ये वो जोड़िया थी जिनको की उस बोर्ड के ऊपर हाईलाइट किया गया था, जिसमें निशा राहुल ये भी पीछे नहीं थे। फ्रॉम दिल तो पागल है, मोहब्बतें से आर्यन और मेघा भी वहां पे मौजूद थे, आदित्य और सुहानी साथिया से इनके नाम भी वहां मौजूद थे फॉर द ईयर 2002। और ऐसे कर करके यशराज बैनर्स की जो ये सारी फिल्में थी उनके जो मेन लीड्स थे, जो मेन कपल्स थे, उनके सबके नाम लिखे हुए थे एज द विनर्स ऑन दैट बोर्ड। सैडली उसे हाईलाइट क्यों नहीं किया, वो वाकई में इतना हाईलाइट पॉइंट था, क्योंकि मुझ जैसे जो फिल्मी लोग है ना, हमें ये डिटेलिंग बड़ी पसंद आती है। चलो जी, अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे यार की शादी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. बस इसी फिल्म से इंस्पायर हुई थी ये.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और हम मासूम से लोग, जब मेरे यार की शादी आई थी, एट दैट टाइम जब इस फिल्म को देख रहे थे, हमें नहीं पता था कि देयर इज एन इंग्लिश मूवी जिसको कि देखने के बाद मेरे यार की शादी बनाई गई थी. एंड जब मैंने ये इंग्लिश मूवी देखी स्टारिंग जूलिया रॉबर्ट्स, जो 1997 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, आई वॉज इन लव विद द मूवी यार. दो मैंने मेरे यार की शादी देखी हुई है स्टिल, बिकॉज ऑफ कोर्स इंग्लिश मूवी में ड्रामा कम और इमोशन ज्यादा थे. इट्स जस्ट दैट कि उसी चीज को अगर हम इंडियनाइज कर देंगे और उसके अंदर खूब ड्रामा और पूरा फैमिली ड्रामा भर देंगे, तो वो कैसी निकल के आएगी? बिल्कुल मेरे यार की शादी है जैसी निकल के आएगी. वेल स्टिल, मतलब ये बात जानने में कि मेरे यार की शादी है इज अ कॉपी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, मुझे काफी साल लग गए ये सफर तय करने में. बिकॉज दैट वॉज अ टाइम जब मैं सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड मूवीज देखा करती थी, एंड लेटर ऑन हमारी जिंदगी में हॉलीवुड कहीं आया थैंक्स टू द चैनल्स जो केबल में इंट्रोड्यूस हुए थे, स्पेशली HBO. बट डिड यू नो कि ये जो मूवी थी, ये प्रीतम दा और जीत गांगुली का पहला मेजर प्रोजेक्ट था एज म्यूजिक डायरेक्टर्स, एंड इन्होंने एज अ डुओ काम किया था. उनके कंपोज किए गए साउंड ट्रैक्स तो सुपर हिट रहे यार, बिकॉज द एल्बम ऑफ दिस मूवी इज जस्ट अमेजिंग. लेकिन इस फिल्म के बाद प्रीतम दा ने अलग करियर स्टार्ट किया और जीत गांगुली अलग काम करने लग गए. बट मजे की बात तो ये हुई कि थैंक गॉड कि प्रीतम दा ने अपने करियर के पहले मेजर प्रोजेक्ट में किसी दूसरे गाने से इंस्पिरेशन नहीं ली. फिल्म तो ऑलरेडी किसी दूसरी स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, एटलीस्ट गानों ने तो ये काम नहीं किया. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: खूब जमता था रंग जब मिल बैठते थे तीन यार, राजा, रैंचो और हमारा टेलीविजन सेट।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजा और रैंचो एक ऐसी अद्भुत कहानी थी, एक ऐसा शो था जहां एक बंदर रैंचो और डिटेक्टिव राजा प्लेड बाय वेद थापड़, इनकी जोड़ी मिलकर क्राइम केसेस सॉल्व किया करते थे, वो केसेस जो पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाती थी। और क्या इंटरेस्ट लेकर हम देखा करते थे यार इस शो को ऑन डीडी मेट्रो। आई यूज्ड टू बी डन विद माय होमवर्क ऑन टाइम सो दैट टीवी देखने को मिले और राजा और रैंचो मिस ना हो जाए। एंड एट दैट टाइम एक्चुअली एनिमल वीडियोस और मंकीज के मैनरिज्म्स ऑब्जर्व करती हुई रील्स देखने को नहीं मिलती थी ना, तो एक बंदर एक इंसान के साथ दोस्ती का रिश्ता कैसे निभाता है ये देखने में ना मुझे बहुत ही मजा आया करता था। इट यूज टू बी वेरी एंटरटेनिंग, मोर सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर वाज अ बंदर एक्टिंग इन द शो। एंड शो हालांकि राजा और रैंचो पर था, लेकिन मेरे लिए हीरो तो रैंचो था, बॉस, हु वाज एक्चुअली नोन एज द वंडर मंकी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म यस बॉस इज डेडिकेटेड टू ऑल दोस सिंगल्स हुव गिवन अप होप कि वो लोग कभी प्यार ढूंढ पाएंगे अपने लिए। अरे चिल यार, एक दिन आप भी अपने पार्टनर के लिए यही गाना गाने वाले हो कि एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और देखो यार, अभी तो पार्टनर इन क्राइम ढूंढने की बारी आ चुकी है मेरी और मेरे पार्टनर इन क्राइम होते हो आप। जब मुझे खेलना होता है मान ना मान करो गानों की पहचान। सो बेसिकली आज के वो दो गाने जिनकी धुने मैंने आपस में मिक्स कर दी है ताकि आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर पाओ आर दीज टू।

और अब बस सिंपल सा काम करना है जो हम हर रोज करते हैं, और वो ये है कि आपको मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, आपका नाम, आपके शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई हिंट दे दूं, तो चलो ठीक है यार, इन दोनों ही गानों में वो एक्ट्रेस है जिनके आते ही सबको कह दिया जाता है Guess who? Stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था, बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है, तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सारा जमाना सारा का दीवाना
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: वो कर्ल्स जिनको कि आज भी केमिकल लगा लगा के धो दिया जाता है, 90s के दौर में ऐसे कर्ल्स हुआ करते थे जिनको हम कह सकते हैं दीज आर रॉ कर्ल्स।
3: नब्बे की गप्पे।
2: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आई क्लियरली कैन नॉट बिलीव कि आज के दौर की लड़कियां जो है उनको उठाकर अगर हम 90s में डाल दें और कहें कि तुम्हारे पास कोई केराटिन का ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेटनर नहीं है, आपके पास ये जो कर्लर्स वर्लर्स है और जो जितने भी फैंसी चीजें आज हमारे पास हमारी वैनिटी में है अपने बालों को एकदम टिप टॉप रखने के लिए, वो नहीं है तो क्या हो यार दुनिया का। बिकॉज 90s का दौर वो दौर था जहां पर लुक्स एकदम रॉ हुआ करते थे। बालों को तो आज भी मुझे याद है कैसे रखा जाता था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आई एम श्योर एक ब्रश मार दिया जाता होगा यार, एंड दैट्स अबाउट इट। हीरोइन रेडी है शॉट के लिए बॉस। और वो कर्ल्स जो बिल्कुल रॉ हुआ करते थे, बिल्कुल ड्राई हुआ करते थे, कहीं ऐसा नहीं लगता था कि उसके ऊपर जेल अप्लाई कर दिया गया या कुछ और अप्लाई कर दिया गया है। उन रॉ कर्ल्स के दीवाने सभी हुआ करते थे, माधुरी दीक्षित के कर्ल्स हो, जूही चावला के कर्ल्स हो या फिर पूजा भट्ट के कर्ल्स हो। बट धीरे धीरे करके वो कर्ल्स जो है वो स्ट्रेटन होते गए विद टाइम, जैसे जैसे हेयर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते गए वैसे वैसे वो कर्ल्स जो है वो गायब से होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट आज के दौर में तो मुझे लड़कियां जो नॉर्मल चलती हुई सड़क पर नजर आती है ना, उनके भी कर्ल्स नहीं नजर आते हैं यार। And I feel really sad about it because I miss those curls, यार वो heavy curls जिससे बालों का volume क्या next level रखता था। I'm sure कोई ना कोई ऐसी लड़की जिसके पास वो curls है वो मुझे सुन रही होगी, तो मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी यार कि ये curls नायाब है, इन्हें straighten मत करो, क्योंकि आजकल तो सभी के बाल straighten है। तुम्हारे बाल सबसे अलग है जिनमें curls है, और हम naturally straight बालों वालों से पूछो कि हमें curls कितने पसंद आते हैं, तड़पती हूँ मैं कि किसी तरीके से मेरे पास भी ये curls आ जाए यार। So yeah, be proud of your curls and please don't straighten them with all these chemical treatments. We love you the way you are and you should also love yourself the way you are yaar. You tune in with me Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi. It's hot.
0: चांदनी कुछ कहा

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर चॉक एंड डस्टर,
2: यादों को चिट्ठी।
1: कभी तो तुम क्लासरूम चमकाया करते थे, तो कभी तुम टीचर का मूड ही चमका दिया करते थे। कहाँ चले गए यार वो दिन जब काले ब्लैकबोर्ड पर तुम्हारा जादू चला करता था। जब चौक ब्लैकबोर्ड से मिला करती थी ना, तो एक अलग ही म्यूजिक बना करता था, और जब डस्टर चौक का लिखा हुआ मिटारा होता था तो सुर बदल जाया करते थे, लेकिन म्यूजिक जरूर हुआ करता था दोनों की उस लैंग्वेज में। वो कोई सिंपल आवाज नहीं थी, बल्कि हमारी पढ़ाई की बैकग्राउंड म्यूजिक थी बॉस। हर मंडे को हमारी क्लास में चौक का एक नया डब्बा आया करता था नए लुक के साथ, और सैटरडे तक वो थक हार के डब्बा खाली हो जाया करता था। और डस्टर भाई साहब, तुम तो पूरे हफ्ते धूल में लतपत होकर ब्लैकबोर्ड को ही चमकाते रहते थे, जैसे कोई दोस्त हो जो हमेशा साथ निभाए चले जा रहा है, चाहे सिचुएशन कितनी भी धूल भरी क्यों ना हो। याद है जब टीचर्स गुस्से में आते थे और चौक इतनी जोर से बोर्ड पर मारते थे कि टक की आवाज क्लास की आखिरी बेंच तक सुनाई देती थी, और डस्टर का उड़ता हुआ कमबैक सीधे खिड़की के पास बैठे लड़कों के ऊपर। हालांकि फिर हम मासूमों को पता लगा कि यार इससे तो चोट भी लग सकती है, ये तो गलत है। बट भाई जब क्लास में तुम्हारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था ना मिड वीक के अंदर ही, तो क्लास मॉनिटर को भेजा जाता था, और वो एक नया डब्बा लाने के लिए न जाने कहाँ जाया करता था। फिर मैम उस डब्बे को क्लास की अलमारी में सेफली रख दिया करती थी। तुम्हें पता है, आज तक मुझे नहीं पता है कि क्लास मॉनिटर को तुम्हारे डब्बे के लिए कहाँ जाना पड़ता था, क्योंकि मैं तो कभी क्लास मॉनिटर बनी ही नहीं। कभी तुम पर हम अपने ख्वाब लिखा करते थे, अपनी ड्राइंग्स बनाया करते थे, लोगों को चढ़ाया करते थे, टीचर्स के कार्टून्स बनाया करते थे, और आजकल स्मार्ट बोर्ड पे उंगलियां चलती है बॉस। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें आ गई हैं दुनिया में। पर सच बताओ, वो मजा कहाँ यार जो तुम्हारे साथ था। चौक के पाउडर से भरे हुए हाथ और डस्टर से निकली धूल में लिपटा हुआ वो ज्ञान आज भी दिल को सुकून देता है। लेकिन अब तुम ना हमारी जोड़ी के एग्जाम्पल्स में काफी काम और याद आते हो, क्योंकि अब हम तुम्हारी मिसाल दिया करते फॉर अ हिट जोड़ी। जब किसी जोड़ी की केमिस्ट्री की बात करनी हो ना, तो जुबान पर आता है बिल्कुल चौक और डस्टर की जोड़ी है बॉस। देखा तुम्हारा इम्पैक्ट हम पर कितना था, इतना कि चौक तुम हमारे लिए सिर्फ धूल नहीं थी, और डस्टर तुम सिर्फ किए कराए पर फिरने वाले डस्टर नहीं थे। तुम्हारा रिश्ता उन स्कूल डेज से ही हमसे काफी गहरा था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट जो आज भी अगर कहीं किसी क्लासरूम में चली जाती है और ब्लैकबोर्ड देख लेती है ना, तो मुस्कुरा देती है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: उदित नारायण की आवाज में रंगीला मूवी से दिस गाना इज कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: ये गाना कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन है प्यार की मोहब्बत की बात, लेकिन इन अ टपोरी फॉर्मेट। एंड ऑफ कोर्स इस गाने में जो पिक्चराइजेशन है उसने टपोरी फॉर्मेट को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। बट ये जो गाना है ना, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल। ओ मेरे भाई, इसका कोई हल नहीं है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है कि परत दर परत आपको हल जो है वो अपने आप या तो मिल जाएंगे, या हो सकता है कि आप हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहे इस चीज को लेकर। एंड दिस गाना इज अबाउट द कश्मकश जो एक बंदे के दिल में होती है। बंदा सोच रहा है कि यार, रोज हम यही सोच रहा होता है कि आज हमको अगर वो कहीं मिल जाए ना, तो ऐसा बोलेगा साला, वैसा बोलेगा, खुल्लम खुल्ला उस पे दिल का राज हम खोलेगा। लेकिन टपोरी फॉर्मेट में आगे की जो बात कही गई है ना, वो टपोरी तो है लेकिन खूबसूरत बड़ी है कि वो सामने चमकती है, सांस ही अटकती है और ये जुबान जाती है फिसल। तो क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। ये यूजुअली वो सवाल है जो एक लड़का अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि कैसे बोलू यार उसको, कैसे अपने प्यार का इजहार करूँ, कैसे अपनी रातों की जो उड़ी हुई नींद है, करार है, उसको मैं काबू में कर पाऊँ। नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब प्यार एक तरफा हो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि प्यार एक तरफा है या दो तरफा। अच्छा चलो, प्यार नहीं तो पसंद ही सही, उसको प्यार में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पसंद का पी भी होना चाहिए भले ही प्यार का पी ना हो। क्योंकि जिंदगी की बात करें ना बाबू मुशाय, तो ये 90s की कोई फिल्म नहीं है कि हीरो को लड़की पसंद आई तो जाके बोल दिया कि आई लव यू और लड़की हाँ बोल देगी। ऐसा सिर्फ तब की फिल्मों में हुआ करता था। लड़की की भी हामी जरूरी है बॉस, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब लड़कों ने ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया है, जब प्यार एक तरफा है और आपने नहीं पूछा है कि क्या मैं तुम्हें भी पसंद हूँ, तो लड़कों ने मुंह की खाई है और फिर उनके दिल ने दी दुहाई है। तो इस सारे प्रोसीजर से बचने के लिए सबसे पहले ये कन्फर्म करो कि पर से प्यार ना सही लेकिन पर से पसंद है कि नहीं। चलो जी, अब जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती भी जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: सत्ते पे सत्ता, ये फिल्म जब आप देखते हैं ना, आपको समझ नहीं आता कि किसको ज्यादा पसंद किया जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें वो जो सातों के सातों भाई है ना, इतने मजेदार हैं, एक एक किरदार है वो अलग अलग। अभी मैंने लास्ट टाइम फिल्म देखी थी तो मुझे शक्ति कपूर पे बड़ा प्यार आ रहा था यार, वो जो उसमें मंगल का रोल करते हैं ना, जो बात करते करते थोड़ा अटकता है। और भी जो भाई का किरदार निभा रहे हैं जितने भी एक्टर्स, वो सारे किरदार इतने यूनिक है ना, सबको कोई ना कोई ऐसे स्पेशलिटी दी गई है। सत्ते पे सत्ता उन फिल्मों में से एक है, वो जहां भी मुझे देखने को मिले ना, मैं तो बैठ जाती हूँ। 1982 की वन ऑफ द हिट फिल्म्स, सुपर हिट मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आपको पता है 1982 की टॉप 10 फिल्मों में ये आती ही नहीं है। कौन सी फिल्में आती हैं? एक तो डिस्को डांसर, विधाता, प्रेम रोग, खुद्दार, निकाह, अशांति, राजपूत, फर्ज और कानून, शक्ति एंड हाउ टू फॉरगेट अमिताभ बच्चन साहब की ही नमक हलाल। तो इसका ये गाना सुन लेते हैं जिसमें सीख समझाइश दी जा रही है हमको। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: Yeah.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: शर्मिला टैगोर जब स्कूल में स्टूडेंट थी तो कैसी थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: वेरी स्टूडियस, और जो हमारे कैप्टन जो कहते थे, आई वॉज अ स्लेव ऑफ माई स्कूल कैप्टन, अगर मुझे कुछ भी बोले आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो।
0: वाह, सुंदर भी और स्टूडियस भी। वैसे ये तो आपको पता है ना कि शर्मिला टैगोर बंगाल के प्रेस्टिजियस इलस्ट्रियस गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से बिलोंग करती हैं। शर्मिला का ये नाम शर्मिला किसने रखा, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था। ऑल्सो इनका निकनेम रिंकू था।
1: बंगाल में सबका डाक नाम होता है, जिसको हम डाक नाम बोलते हैं। डाक नाम जो एक घर का नाम होता है, रिंकू और शर्मिला वॉज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर When he came back from Czechoslovakia, वहाँ का नाम था योर्मिला। उस वापस आने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा दुई बोन बोल के, तो उसमें देयर वाज शर्मिला एंड उर्मिला। योर्मिला का उनको इन्फ्लुएंस हो के वो शर्मिला।
0: चलिए, शर्मिला ने भी टैगोर खानदान का नाम अलग ही तरह से रोशन किया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1969-70 में एक अमेरिकन फिल्म का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके काफी सारे वर्जन्स थे, काफी सारे सिंगर्स ने इसे गाया था। एक वर्जन मैं आपको सुनाती हूँ जो वहाँ के तब के फेमस सिंगर एंडी विलियम्स ने गाया था। गाने के वर्ड्स हैं, रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड। सुनिए जरा।

ऐसा कहा जाता है कि इसके म्यूजिक से 1976 की फिल्म चलते चलते का जो गाना दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे उसका म्यूजिक लिया गया है। वेल, आप ये गाना सुनो जरा, दूर दूर चलते चलते का, और खुद ही डिसाइड करो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

वो फिल्म बड़ी स्पेशल होती है जो हमने सिनेमा हॉल में पहली बार देखी होती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो सिनेमा हॉल, वो शहर, वो वक्त, कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी होती है ना। वैसे आपको पता है शाहरुख खान ने पहली कौन सी फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी? भाई तब वो 8 साल के थे और स्कूल में ना उनकी हिंदी बड़ी कमजोर थी, तो उनकी मम्मा ने उनको बोला कि भाई हिंदी के टेस्ट में तुम 10/10 लेकर आओ, तब तुमको फिल्म दिखाने ले जाएंगे। तो शाहरुख ने ऐसे वैसे जैसे भी करके, थोड़ी सी चीटिंग भी करके, हिंदी के टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10/10 लेकर आए। और तब उनके पेरेंट्स उनको दिल्ली के विवेक सिनेमा हॉल में 1973 की जोशीला फिल्म दिखाने ले गए। ये यश चोपड़ा साहब की फिल्म थी, उसी का गाना सुन लेते हैं। गाना थोड़ा सैड है लेकिन याद कितनी स्पेशल है। आपकी भी ऐसी कोई याद होगी जब आपने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी थी, कौन सी देखी थी, कौन सा थिएटर था वो, कौन से शहर में, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on

आपको पता है सिंगर शब्बीर कुमार मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। वेल, उनकी आवाज से भी समझ में आता है कि वो रफी साहब के कितने बड़े मुरीद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और शब्बीर कुमार साहब ना इस तरह के इवेंट्स में परफॉर्म करते थे, एक शाम रफी के नाम या मोहम्मद रफी सॉन्ग्स नाइट। और इसी तरह के किसी इवेंट में उनको नोटिस किया मनमोहन देसाई साहब ने। भाई उस टाइम पे लोग मोहम्मद रफी साहब जैसी आवाज ढूंढ रहे थे, बिकॉज रफी साहब हैड पास्ड अवे इन 1980। और तब देसाई साहब ने इनका नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रेकमेंड किया और कुली में अमिताभ बच्चन साहब की आवाज ये बन गए। उसी साल 1983 में इनकी बेताब फिल्म भी आई जिसमें सनी देओल की आवाज ये बन गए। उसी फिल्म का ये गाना सुनते हैं, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, साथ में लता मंगेशकर की आवाज भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Energy. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कपूर खानदान के चश्मो चिराग, ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और कपूर खानदान के ही एक चश्मो चिराग थे शम्मी कपूर साहब, जिन पर न जाने कितने ब्रिलियंट अमेजिंग माइंड ब्लोइंग गाने पिक्चराइज हुए हैं, लेकिन उनका मन पसंद ऐसे दिल को छूने वाला फेवरेट गाना पता है कौन सा था? उनका खुद का। 2011 में जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले तक जो फोन वो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें उनकी रिंग टोन थी ये गाना। कौन सा गाना? शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, पगला कहीं का फिल्म का ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

जूल थी फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय एसडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है एसडी बर्मन से आपको प्यार से फिल्म इंडस्ट्री में कर्ता कहा जाता था। कर्ता का मतलब कार्य करने वाला या क्रिएटर। अच्छा, 1944 में जब एसडी बर्मन कलकत्ता से बॉम्बे आए थे ना, तो बहुत बेजार हो गए थे उस शहर से, फास्ट पेस्ड लाइफ, और उनको लगा कि बॉम्बे बहुत मटेरियलिस्टिक है, उनके स्वभाव का नहीं है। उन्होंने मन बना लिया था कि भाई वापस चले जाएंगे कलकत्ता, लेकिन फिर जैसे तैसे वो रुक गए। अच्छा वह रुक गए, नहीं तो उनकी कहानी, उनका जीवन वैसे आगे नहीं बढ़ता जैसे बढ़ा। और फिर हमें आरडी बर्मन भी मिले, जिनका कंपोज किया हुआ अगेन आइकॉनिक गाना हम सुनेंगे यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

1975 में ना एक फिल्म आई थी काला सोना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसका म्यूजिक कंपोज किया था आरडी बर्मन ने, और इसका जो टाइटल म्यूजिक था ना, इसका थीम म्यूजिक, वो जो आरडी बर्मन ने कंपोज किया था ना, वो आप थोड़ा सा सुनिए जरा।

सुनी सुनी सी धुन है ना। वेल, इस धुन को इन्होंने दोबारा इस्तेमाल किया था 1977 में इस गाने के लिए जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, खुद आरडी बर्मन की आवाज, फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची

1981, then 1993, then 2003. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 10-10 साल के गैप वाले साल वो साल हैं जब संजू बाबा और उनके पापा सुनील दत्त साहब ने किसी फिल्म में साथ में काम किया था। साथ में काम किया था मतलब एज सन एंड फादर काम किया था। सो 2003 में मुन्ना भाई MBBS, 1993 में ये फिल्म थी क्षत्रिय और 1981 में ये फिल्म थी रॉकी, जो संजू बाबा की लॉन्च फिल्म थी, जो सुनील दत्त साहब ने ही डायरेक्ट की थी। इसी का गाना सुनते हैं, आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, आशा भोसले, किशोर कुमार, आरडी बर्मन की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: दिलवार है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 70s की दो हीरोइंस परवीन बाबी और जीनत अमान ने ये पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया कि हिंदी फिल्मों की हीरोइंस कैसी दिखती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर चाहे वो उनके लुक्स हो, उनका मेकअप हो, स्टाइलिंग, फैशन, फिगर हो, इस बारे में सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने क्या कहा था।
1: ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, इत्तेफाक से हो गया। There was no strategy, it was who I was. I was studying in America, मैं वहाँ से आई थी। So I had a cosmopolitan upbringing. So that was who I was. And those films worked. And because the films worked, I was accepted by the audience.
0: ऐसे आपको पता है अपनी पहली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जो सुपर हिट हो गई थी, जिसके बाद ये सेंसेशन बन गई थी, उसके बाद ये सब छोड़ छाड़ के बैग वैग पैक करके यूएस जाने वाली थी। देवानंद साहब ने उनको रोका कि भाई यहाँ रुक जाओ, तुम्हारा बहुत स्कोप है।
1: Yes, that is exactly what happened. क्योंकि मुझे फिल्मों के बारे में बहुत कम पता था, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि you know, I was starting a career. तो ये सारी फिल्में एक के बाद एक हिट हो गई, तो तब मुझे पता चला कि you know what, I'm a leading lady in Hindi films. So, Yes, then I started to enjoy.
0: बस इसी enjoy में इन्होंने इतना बड़ा और ढेंटडैन टाइप का करियर बना लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: सुनो, हम किसी से कम नहीं, ठीक है?
1: मिर्ची, सुन रहे हैं आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और नहीं, मैं कोई शेखिया नहीं मार रही, मैं एरोगेंट नहीं बन रही,
0: मैं तो ये बता रही हूँ आपको कि 1977 की हम किसी से कम नहीं के म्यूजिक के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब ने आरडी बर्मन की कुछ 200 ट्यून्स रिजेक्ट की थी।
1: पर फिर पंचम कौन से कम थे, उन्होंने वो 200 ट्यून्स कहीं और बेच दी। मतलब ऑफ कोर्स वो अच्छी ट्यून्स थी, तो किन्हीं और फिल्मों में, किन्हीं और गानों में इस्तेमाल कर ली गई। और इस फिल्म के लिए जो ट्यून्स चुनी गई थी, क्लासिक ट्यून्स, उन्हीं में से एक ही आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

हा, क्या लिखा है गुलजार साहब ने इंतजार पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो गुलजार साहब कहते हैं, सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया, फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, ये गुनाह हमने एक बार किया। और इंतजार के ऊपर ही गुलजार साहब का लिखा हुआ, एक्चुअली किसी के आने का इंतजार खत्म होने पर जो खुशी होती है उस पर जो गुलजार साहब ने लिखा है, अब हम वो गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट। और इमेजिन कीजिए आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, बहुत कसके भूख लगी है और खाना ऑर्डर किया है, डिलीवरी बॉय बस आपका खाना लेकर आ ही गया है और ये गाना चल गया है।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: Mirchi, it's hot.
1: She is definitely on a roll.
2: Shruti.
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
1: मिर्चे पे ट्यून्ड इन हो आप. और भाई अभी तक अगर आपने इम्तियाज अली डायरेक्टोरियल मैं वापस आऊंगा नहीं देखी, देन प्लीज मूवी थिएटर से हटने के पहले एक्सपीरियंस कर लीजिए. एंड आई एम श्योर उसके बाद इस बंदी के बारे में जो भी बातें मैं कर रही हूँ, यू विल अग्री टू एवरी सिंगल बिट ऑफ इट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट शर्वरी, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया था. प्यार का पंचनामा 2, बाजीराव मस्तानी, सोनू की टिट्टू की स्वीटी, इन सारी फिल्मों में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया. जिसके बाद एक्टिंग डेब्यू किया विद द फॉरगॉटन आर्मी वेब सीरीज, उसके बाद बंटी और बबली 2, एंड फाइनली साल 2024 उनके करियर का गेम चेंजिंग ईयर भी बना विद द मूवी मुंजिया. बाकी शर्वरी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्टर लव रंजन जो हैं वो अपनी अगली फिल्म में कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट उनको कास्ट करना चाहते हैं. ऑल्दो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बट थिंग्स आर डेफिनेटली लुकिंग पॉजिटिव. एंड शर्वरी, इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो भाई YRF स्पाई यूनिवर्स की अल्फा में भी नजर आने वाली हैं, सूरज बरजातिया की ये प्रेम मोल लिया में भी नजर आने वाली हैं. तो भाई बिना अच्छा काम किए इस तरीके की फिल्में तो किसी को मिलती नहीं ना. दैट्स व्हाई आई सेड शी इज डेफिनेटली ऑन अ रोल. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अगर इन फिल्मों के गाने नहीं होते ना तो शायद इनको कोई याद ही ना करता।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: हाँ जी बाबू मोशाए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं, मूवीज हैं, उसमें जो गाने, जो साउंड ट्रैक होता है, दैट इज रियली रियली रियली रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से या तो मूवी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है या फिर गुड़गुड़ गोते खाती है। बट हाँ, ऑन अ कॉन्ट्रारी, देयर हैव बीन फिल्म्स जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट उनके साउंड ट्रैक्स वो सुपर डुपर हिट। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी करीब, नंबर दो पे हमने झनकार बीट्स की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट झूम बराबर, एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, नंबर चार पे अब बात करते हैं फिल्म अनवर की, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय मनीष झा। वेल, इस फिल्म में सिद्धार्थ कोयराला और नौहीद साइरसी लीड रोल्स में थे, एंड ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताती हूँ, इस फिल्म का प्लॉट मुझे तो ठीक ठीक अच्छा अच्छा लगा था, काफी सही ट्रीटमेंट था, बट उससे भी ज्यादा चुम्मेश्वरी वॉज द एल्बम यार। अब वो रूप कुमार राठौड़ की आवाज में मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे ओहो हो हो हो, या फिर शिल्पा राव की आवाज में तुसे नैना लागे पिया सावरे ओहो हो, अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ मैं कसम से। एनीवे, इस मूवी से आगे बढ़ते हुए नंबर पांच पे अब बात करते हैं फिल्म यादें की, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था, एंड इट रिलीज इन द ईयर 2001। बाकी फिल्म में म्यूजिक था अनु मलिक का, एंड भाई साहब अगर प्रॉपर मूवी की बात करें तो इट वॉज अ क्रिटिकल एंड कमर्शियल फेलियर, बट मूवी का साउंड ट्रैक वॉज अल्टीमेट गजब का ओहो हो हो हो टाइप्स। अब वो फिल्म का टाइटल ट्रैक हो या फिर ए ली रे ली या फिर जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले भाई साहब, तभी मैं कहती हूँ हम इंडियंस ना किसी फिल्म को बिना गानों के डाइजेस्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली अगर वो फिल्म एक कमर्शियल मूवी हो तो। ताकि अगर आपको मेरी इस लिस्ट में कुछ और एडिशन करना हो, देन फील फ्री टू डू दैट यार। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बचा

0: Mirchi, it's hot.
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं जचदा।

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात कोर सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे